ती बेला मई चन के गयोलिन पीढ़ी में बसर के कुरा कर दी हो कहीं हंस दी हो कहीं रू दी।